我觉得我们说还会能问几个别没关系所以那我继续搞问题是啊那我的技术是说我为啥个比赛你说前大的农民你是的那个多少钱那就是有的算我们就是没关系所以问几个别关系的我为他的这个不是我的多大的货那那会打完所以是他们会有给我们继续给这个那不大的那是给我们的那会的把什么给我们的把什么给我们的我们还给你有些别的我就没这边多一个自己im hagano do hagano wai ha Kelly back hagano wai ha ude de chegi akushasni egden de wachit ai mohawk its gane so ekui jis bito so abit si unyu ga egwesan kadij ga fire loom creation na nakush na gune ka chigo ye du stadia hagano wai ha jibeto ga ji im hagano hagano ye yo mina swes kits ga di tagne ude de che montreal ga gute de ka de che ये मिल गया है कभी न्यू आईज बेहतर गया है ये जी ये महागन और क्या मार का ये मार्शल हैबिचैक है कुन्ह उच्च बेहतर गया या उठाई है उठाई का स्विच क्या का दुख जम स्नोशनानोस ने मगे दुदाव कुछ गया का वो इतमाच गया दन हवेद स्विच ने जम स्नोशनानोस उठ केबेक के वो गया जी जिन हिबियो गया जी गया ایم هیچی از کهگنی از بهتر گیا دن هایی دیده که ویژه اون چیکان گیا کم سنوس نانات شو تن ها کبک اگر چیست میگیا ونشگاه